0: 106.1 FM. This is us. The vibe and energy of Sangeet 106.1 FM. This is us.
1: लड़के वाले आज आ रहे हैं और हम लड़कियां दिखाएंगी कि हम किसी से भी कम नहीं है. Music.

भगवान शिव का आशीष मिल जाए तो जीवन का एक ऐसा भक्तिपूर्ण स्वरूप बने जो सदा विजयी और परमहितकारी हो। नटराज, प्रलयंकर, शुभांकर, नटेश्वर भगवान शिव माना संहार करता है, किंतु उनके इस संहार में जीवन दर्शन है।